खाएँ नि सब खाएँ नि रक्सी भने रक्सी निचाके रक्सी सबै होटल बाल्ने चुरु चुरुमा जा।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे